कोई एक पहलू या एक एस्पेक्ट से काम करना नहीं है। मसलन अगर हमने बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज करवा दिया, जो बहुत अच्छा काम है, अपने अंदर बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर आपने इसको किया और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप तवज्जो नहीं दे सके, तो आप तरबियत नहीं कर पाए। एक एक एस्पेक्ट के ऊपर काम किया, तो हमें ये देखना होता है कि तरबियत, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक एक अप्रोच चाहिए उसके अंदर, जिसको एक होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, तो हर तरीके से और हर तरफ से आपको देखना पड़ता है कि बच्चे को आपने तरबियत के नाम पर क्या कुछ देना है। तो अगर आपने एक सेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली, तो इसको शहीद मुताहरी जैसे स्कॉलर मिसाल में कहते हैं कि जैसे एक आदमी का हाथ काफ़ी लंबा हो गया और बाकी हाथ छोटा रह गया, तो वो जो लंबा हाथ होगा वो बाज़ औक़ात एडवांटेज के बजाय एक डिसएडवांटेज में तब्दील हो जाएगा, तो क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी में एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा होगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह देखना होता है कि जब हम किसी तरबियत के अमल से गुजर रहे हों तो तरबियत हर पहलू से आ रही हो। अच्छा, मामूलन ऐसा नहीं हो पाता, और वो उसकी वजह ये होती है कि वालदैन जिस पहलू को, जिस एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ रहे होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर ख़ुद उनका माइंड नहीं बना होता वो उसको खुदा न करे इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक एक इस वालदैन के एक ग्रुप को सोचें कि जिनके नज़दीक इबादत बहुत अहम है, मसलन उन्होंने ख़ुद बड़ी ज़िंदगी गुजारी है इबादत के अंदर। मैं यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आने के बाद कुछ ऐसी मिसालें देखता हूँ जिससे बड़ी अजीब व गरीब रिजल्ट्स नज़र आते हैं, उनमें से एक मिसाल इस टाइप की है कि जिसमें कोई पेरेंट्स हैं और उन्होंने बकौल उनके खातून के कि हमने ज़िंदगी में कभी एक महीना रोज़े नहीं रखे, बल्कि हमेशा साल में 3 महीने रोज़े रखें वाजिब समझ के, यानी मसलन जैसे 3 महीने वाजिब हो गए ऐसे रोज़े रखें, और मिसाल के तौर पर नमाज शब जो है वो बहुत कम ख़ज़ा होने दिए, बहुत कम नमाज शब क़ज़ा होने दिए। लेकिन उन्होंने खुद ये कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि अब हमारे बच्चों में से कोई मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हुआ कैसे है कि हमने तो ज़िंदगी में रोज़े भी कभी क़ज़ा करना तो छोड़ो, 1 महीने की जगह 3 महीने रख लिए, और नमाज को अहमियत देना या ना देना तो छोड़ें, हमने नमाज शब कभी क़ज़ा नहीं होने दी लेकिन हमारे बच्चे मुसलमान नहीं हैं, तो ये क्यों ऐसा हो गया। तो मुझे यूँ समझ में आया, और उन्होंने कहा कि हमारे शहर में कभी पहली कोई मजलिस हुई तो हमारे घर में हुई है, और कितने अरसे तक सेंटर हमारे घर में चलता रहा है, और उसके बाद कहीं जाके बाहर सेंटर बनाए। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि इनके बच्चे और स्ट्रेच हो गए होंगे इस दौरान में। अब क्या था, उनके जहन में एक एक कोई हिस्सा था जो बहुत अहम था, उन्होंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ हिस्सों के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाए, और उसके नतीजे में क्या होता है कि एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो तरबियत के अमल में आपको इसमें बहुत होशियार होना होगा कि ऐसा ना हो कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और दूसरी जगह के ऊपर आप मिस कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा कि आपको छोटी चीज़ों पे तवज्जो देना आता हो, छोटी चीज़ों पे आप तवज्जो दे सकें ज़िंदगी की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पर मैं रिस्क लेके आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कपड़ा टंगा हुआ है ये वाला, ये सीधा है या ज़रा सा टेढ़ा है? तो मसलन अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि आप सब लोगों ने जब इस तरफ देखना शुरू किया था तो कितने लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि ये ज़रा सा टेढ़ा है, सही? जब आप इस तरह से अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे छोटी चीज़ों में, तो आप बच्चे के अंदर भी बहुत कुछ देख पाएंगे कि आपको कहाँ पर मेहनत करनी है। अलबत्त ये तो एक फ़िज़िकल इशू है कि आपने अपनी आँखों से देखा, बाद लोग फिज़िकल इशूज़ के अंदर इतने शार्प नहीं होते, लेकिन बहरहाल और चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। तो ये अच्छा, इसमें मर्द और औरत का भी फ़र्क होता है कि दोनों की अपनी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ होती हैं वो किसी एक जगह के ऊपर औरत की नज़र तेज़ होती है, उस जगह के ऊपर मर्द की नज़र इतनी तेज़ नहीं होती, तो ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये होता है। तो हम इसको फ़िलहाल कम अज़ कम कोशिश करते हैं कि ये कुछ बेहतर हो गया, लेकिन अब यहाँ से भी देखिए टेढ़ा हो गया होगा, फिर बहरहाल ये मसाइल रहेंगे। तो ये एक एक पहलू हो गया कि आप तरबियत पे जब आप अमल करें तो हर तरफ से अमल करें, और इस हर तरफ से अमल करने के लिए आपको एक बारीक आँख चाहिए होगी कि आप चीज़ों को तो माइनर जो डिटेल्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दे पाएँ। ऐसा ना हो कि आप एक बड़ी चीज़ों को देख पाएँ और माइनर चीज़ें आपकी नज़र से निकल जाएँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, इसमें इस बात की तरफ भी ज़रूर तवज्जो दी जा सकती है, देनी चाहिए, वो ये कि तरबियत टुकड़ों का नाम नहीं है, तरबियत एक सिस्टम का नाम है। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मिसाल

के तौर पर फर्ज कीजिए कि अभी जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, जिसमें मिसाल के तौर पर एक जगह पे साउंड है, एक जगह के ऊपर वीडियो है, और ये जो दो पीसेज हैं ये साउंड को डील करने के लिए हैं, सही। तो अब ये दो तीन पीसेज, चार पीसेज मिलकर, बल्कि ज्यादा पीसेज मिलकर साउंड का सिस्टम बना रहे हैं, सही है। तरबियत भी पीसेज हैं, टुकड़े हैं, अलहदा अलहदा ये सिस्टम के अंदर है, नहीं सिस्टम के अंदर है। तो आपको इस पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी सिस्टम के मामले में, कि आप हर पीस को अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं रख सकते। जब आपको सिस्टम करना होगा तो सिस्टम के अंदर आपको तमाम पीसेस के अलाइनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका लाउड स्पीकर यहाँ पर रखा हुआ है और इसको आपने थोड़ा सा इधर को टर्न कर दिया तो ये यहाँ पर आवाज़ ख़राब हो जाएगी फिर। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि तरबियत में पीसेस कौन कौन से हैं, आपको ये भी देखना होता है कि पीसेस की अलाइनमेंट सही हुई है नहीं हुई है। तो बच्चे के अंदर बाद वक़्त पीसेस मिस हो जाते हैं, और बाद वक़्त क्या होता है, पीसेस तो होते हैं लेकिन अलाइनमेंट सही नहीं होती। अब इस अलाइनमेंट का जो मैं बच्चों की तरबियत में कह रहा हूँ वो उनका प्रायोरिटाइज होना है, कि जब आपने बच्चे के अंदर कुछ चीज़ों को सिखाने की कोशिश की तो जिस प्रायोरिटी के साथ उसको सीखना था उसने उसके साथ सीखा है, या प्रायोरिटी के सीक्वेंस ख़राब हो गई है। तो अगर आपने सारे पीसेस भी सिखा दिए और वो अलाइनमेंट सही नहीं थी तब भी मामला बनेगा। तो तरबियत का अमल इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है, कि आप तमाम अज्जा को भी सोचें, जो पीसेस हैं उनको भी सोचें, और उन पीसेस के दरमियान तरतीब को, उसकी जो सीक्वेंस है उसको भी सोचें। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ, वो इस तरीके से कि हम सब ने बच्चों को एजुकेशन देनी है, जो एक पीस है बच्चे की तरबियत के अंदर। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन आप किसे कहते हैं? क्या आपके नज़दीक ये क्लियर है कि एजुकेशन किसे कहते हैं? ज़ाहिर है उसकी एजुकेशन के बरसों तक हम खुद जिम्मेदार होंगे, बच्चा अपने एजुकेशन के फैसले खुद नहीं कर पाएगा, वो हमने करने होंगे। मिसाल के तौर पर जब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चों को किस स्कूल में रखना है, और मिसाल के तौर पर स्कूल्स में किस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है, तो ये आपके फैसले होंगे। लेकिन क्या आपके लिए क्लियर है कि एजुकेशन किसे कहते हैं? मसलन अगर मैं एजुकेशन को उर्दू में तर्जमा करूं तो हम उसको तालीम कहते हैं। तो क्या जिस चीज़ को मिसाल के तौर पर अमेरिकन सिस्टम एजुकेशन कहता है ये वही तालीम है जिसको कुरान करीम ने तालीम कहा? ज़ाहिर है कि नहीं है। हम सबको मालूम है कि भाई वो कुछ और है, ये कुछ और है, जबकि हम लफ्ज़ दोनों को तालीम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो दोनों की तालीम का डिफरेंस है वो कितने लोगों के लिए क्लियर है? जो लोग बच्चे की तालीम के जिम्मेदार हुए हुए हैं, क्या उनके लिए क्लियर है कि तालीम का इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? तो मिसाल के तौर पर तालीम का एक हिस्सा हम स्कूल से दिलवा रहे हैं, तो बाकी तालीम का बाकी हिस्सा कहाँ से दिलवाएंगे, और वो है कौन सा जो मिसिंग पार्ट है? आप देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़। आपके आइडियाज़ में क्लैरिटी है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसकी वजह यह है, क्योंकि वक्त कम है तो हम ज़रा थोड़ा सा तेज़ी से कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि सिमिलर विकैबलरीज हैं, बिल्कुल सेम विकैबलरीज हैं, लेकिन मीनिंग्स एंटायरली डिफरेंट हैं, एंटायरली डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर आप, मैंने एजुकेशन की मिसाल आपको दी। अच्छा, अब आप कहीं अगर कोशिश करें कि आप तरबियत के लफ्ज़ का इंग्लिश तर्जुमा करें, सही है, अगर आप तरबियत के लफ्ज़ का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे तब भी आप मुश्किल में आएंगे, कि तरबियत में बाज़ ऐसी चीज़ें आएंगी जो इंग्लिश तर्जुमे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, और ये कल्चर का डिफरेंस भी आएगा। तो मिसाल के तौर पर आप एक सर्टेन कल्चर के अंदर बैठकर तरबियत की बात करेंगे, उसका मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन अगर आपने कल्चर को चेंज किया तो तरबियत का मतलब कुछ और हो जाएगा। इस टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं उनकी क्लैरिटी का हमारे जहन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम तरबियत के अमल में मुश्किल में जा सकते हैं। तो अगर किसी को तरबियत का अच्छा लफ्ज़ समझ में आए तो उसको जाके देखिए कि जो अरबी में तरबिया है उसमें और इंग्लिश के लफ्ज़ तरबिया में, जो भी आप इसका अच्छा ट्रांसलेशन करें, आया दोनों एक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जो मिसिंग पार्ट हैं वो कौन से हैं। तो इसको मेरे ख्याल में आप लेक्सिकोग्राफी के अंदर देख सकते हैं कि इंग्लिश का वो जो लफ्ज़ होगा उसके अंदर मीनिंग्स कौन कौन से आ रहे हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर कोई इस काम के ऊपर थोड़ा सा भी मेहनत करे तो एक और लफ्ज़ है जो बड़ी मुश्किल में आ जाता है, और वो है अमानत। कि जब आप कहते हैं अमानत अरबी में तो इसका मतलब क्या होता है, और जब आप इसका कोई इक्विवेलेंट और किसी जबान के अंदर लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। और ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये वो कल्चर्स का डिफरेंस होगा कि जो मुख्तलिफ तरह से आ सकता है। तो जो भी इस काम को कर रहे हैं उनको इसके अंदर क्लियर होना होगा। फिर ये जो तरबियत का अमल होता है,

मैं इसमें आगे बढ़ाते हुए अर्ज कर रहा हूं, तरबियत के अमल में हमें देखना होगा हमने बच्चे को सिखाना क्या है, किस चीज को हम बच्चों के अंदर ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से गुजारते हुए इस्लाम की इमारत को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं। इसको मैं पता नहीं कितनी दफा अर्ज कर चुका हूं, इसलिए डिटेल नहीं अर्ज करूंगा। एक हिस्सा उसके अकायद होते हैं, बिलीव्स, दूसरा हिस्सा उसकी वैल्यूज होते हैं, अखलाकियात, जिसको हम लोग एथिक्स और मोरल्स भी कह सकते हैं, और तीसरा हिस्सा उसके अहकाम होते हैं, क्या करो और क्या नहीं करो। तो पहला हिस्सा अकायद होता है, क्या है और क्या नहीं है। दूसरा हिस्सा अखलाक और अकदार होते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और तीसरा हिस्सा अहकाम होते हैं, क्या करो और क्या ना करो। ये तीनों हिस्से कनेक्टेड होते हैं। अब मैं तेजी से एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर जब हम अहकाम में कहते हैं नमाज पढ़ो, जब हम कहते हैं नमाज पढ़ो, तो ये जो नमाज पढ़ो है ये एक बिलीफ से निकला है, और वो बिलीफ है जो ये कहता है कि खुदा है, और उस बिलीफ के ऊपर एक वैल्यू क्रिएट हुई हुई है कि खुदा की बंदगी अच्छी चीज है, और उसके ऊपर ये हुक्म आया है कि नमाज पढ़ो। तो अब अगर हमने किसी बच्चे को ये तो बता दिया कि नमाज पढ़ो, लेकिन हम ये नहीं समझा पाए कि बिलीफ कौन सा था, और ये नहीं समझा पाए कि उस बिलीफ से वो वैल्यू कौन सी थी जिसके ऊपर ये नमाज बनी हुई है, तो बेचारा मुमकिन है 30 साल तक नमाज पढ़ता रहे और वो अल्लाह की बंदगी को फिर भी ना ले सके। जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है कि मैं जब उनसे पूछता हूं कि भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव नमाज के लिए क्या है, और आया वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो हम लोग 30 साल तक कह रहे होते हैं कुर्बतन, 30-40 साल तक के कुर्बतन इलाल्लाह, और हमें खुद ये पता नहीं होता कि वो कुर्बत कौन सी है जो हमने अचीव करनी है, और आया वो कुर्बत नसीब हुई है या नहीं हुई है। तो इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करना बहुत ज़रूरी होगा तरबियत के अंदर, कि सारी ये चीज़ें हमारे लिए क्लियर हों, हम कहाँ पर जा रहे हैं, बच्चों के अंदर क्या ईजाद करना चाहते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा कि इसके टॉपिक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तरबियत वालदैन का काम है, किसी एक का काम नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि तरबियत किसी एक का काम होगा और मामला आसान हो जाएगा, नहीं, तरबियत वालदैन का काम है। और अगर दोनों इस मामले में एक ही पेस के ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, फिर मसाइल बहुत टेढ़े हो सकते हैं, और वो इस तरह से हो सकता है कि बच्चे के जहन में, और ये जिन घरों के अंदर ज़ाहिर के तरह सी प्रॉब्लम होती है ताल्लुकात के दरमियान, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि बच्चा ये समझ नहीं पाता कि बिलाखिर दो पिलर्स में से मुझे किसके साथ चलना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ हर्ट होती है वो बच्चे की तरबियत है, कि जब दो ताकतें उसके ऊपर काम कर रही होती हैं तो वो इस बात को नहीं समझ पाता कि मुझे फॉलो किसको करना है। अब मैं इसके अंदर होने वाली मुख्तलिफ स्टडीज़ पर इशारा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पर 3 साल के बच्चे के सामने एक चीज के दो नाम भी लिए जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये स्टडीज हो चुकी हैं, इसकी मुख्तलिफ मीडिया के अंदर रिफ्लेक्शंस हो चुकी हैं किस तरीके से इस बात को समझा गया है। अगर बच्चे के सामने किसी चीज के दो नाम लिए जाते हैं कि एक एक चीज है जिसके दो नाम है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है 3 साल का बच्चा कि ये दो नाम कैसे हो सकते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, अगर दो वालदैन, माँ और बाप, दो मुख्तलिफ लाइन्स पे काम कर रहे हैं तो ये बच्चे का दिमाग दो नाम कबूल करने को तैयार नहीं है। ये किस मुसीबत में फंस जाएगा अगर ये दो लाइंस पे काम कर रहे हुए। तो तरबियत का अमल वालदैन का काम है, और वालदैन को पहले इसमें कोऑर्डिनेशन करनी होगी कि हमने बच्चों को किस समत लेके जाना है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमें ये एहसास है, यूं लगता है कि बहुत सारे वालदैन ने इस बात के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं की होती कि हमें करना क्या है, और वो जिसे कहते हैं बस एक फ्लो में चल रहे होते हैं कि ठीक है सब कुछ हम मिलके कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं कर पाते कि भाई हमने बच्चे के किस पहलू के ऊपर काम करना है और बच्चे को लेके कहाँ तक जाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग तरबियत के अंदर शामिल हैं वालदैन, वो एक दूसरे के साथ अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेटेड करें, और उनको ये पता हो कि हम बच्चे के अंदर किन वैल्यूज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, किन अकायद के ऊपर काम करना चाहते हैं, और ये काम किस तरीके से अंजाम पाएगा। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, जब मैंने कहा कि दोनों की जिम्मेदारी है, तो एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, क्या हमारे लिए ये क्लियर है कि तरबियत सबसे अहम है? हमारी मेंटेलिटी में क्या ये चीज क्लियर है कि तरबियत सबसे अहम है? अभी मैं जिन स्टेट्स में से होके आ रहा हूं

उसमें से एक जगह के ऊपर किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया एक प्रोग्राम के दौरान, वो ये कि क्या हमारी सोसाइटी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि तस्बीहत करना जॉब से ज्यादा बड़ा काम है? क्या हमारी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया? तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करें तो आप फौरन इस बात को एहसास करेंगे कि नहीं, सोसाइटी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और सोसाइटी हमारी ये समझ रही है कि जॉब करना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिलाएगा हत्ता तरबियत करने के मुकाबले में। तो मिसाल के तौर पर जो माएँ अपने अपने कैरियर पे तवज्जो नहीं देंगी और वो बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो देंगी, उनको अपनी फैमिलीज में भी वो रिस्पेक्ट और वो ऑनर नहीं मिल रहा होगा जो अगर वो कमा रही होती तो मिल रहा होता। अच्छा, ये किस जहनीत को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये इस मैंटेलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे नज़दीक तरबियत करना कोई बहुत अहम काम नहीं है। और अगर किसी सोसाइटी के अंदर ये जहनीत बनी हुई हो कि तरबियत करना जॉब के बराबर भी अहम नहीं है, तो फिर उस जगह के ऊपर तरबियत अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जाहिर है हम जानते हैं कि तरबियत जॉब से नहीं हो पाएगी। अब अगर कोई इसको जॉब के बराबर भी नहीं समझ रहा है तो फिर तरबियत कैसे हो सकती है? तो मैंटेलिटी का सही होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जहनों के अंदर ये आ रहा हो कि भाई ये असली काम है, बाकी असली काम नहीं है। आपको जहन में होगा कि मैंने पहला पॉइंट यही रेज किया था कि जिंदगी में बास चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं लेकिन तरबियत रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है। और इस मामले में अगर हम ये कहें कि औरत की माँ होने के नाते पहली जिम्मेदारी तरबियत है, तो मैं उसको कहूँगा औरत को बहुत फख्र करना पड़ेगा कि उसको वो काम मिला है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, और मर्द को वो काम मिला है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट में आ रहा है। और ये बात हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मर्द होने के नाते भी रियलाइज नहीं कर पा रहे और औरत होने के नाते भी रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो मिसाल के तौर पे आज की सोसाइटी में औरत की पहली ख्वाहिश ये रहती है ज़्यादातर कि वो घर में ना बैठे, यानी मैंने उसका नेगेटिव जुमला इस्तेमाल कर लिया कि वो बच्चे की तरबियत करने को क्या कह रही होती है, घर में बैठना, सही है। और मसलन घर से निकलना, मतलब देखिए सेंटेंसेस का जो इस्तेमाल हो रहा है ना, जो हम कंपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं वही खतरनाक है कि हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की तरबियत कर रहा है वो दरअसल बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, जबकि अगर देखें तो असल में तो खड़ा हुआ वही है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। अगर खड़े होने का मतलब काम करना है और बैठे होने का मतलब कम इम्पोर्टेंट काम करना है, तो असल में तो वो खड़ा हुआ है जो बच्चों की तरबियत कर रहा है, लेकिन हमारा जुमला ये कह रहा है कि घर में बैठना, तो यानी उसको हम इतनी वैल्यू देने को तैयार नहीं हो। जब तक हम ये काम कर रहे हैं, खुदा ना करें हम तरबियत के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस मैंटेलिटी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की तरबियत कितना अहम काम है। अब जनाब अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक और पॉइंट है वो ये कि जब हम कहते हैं कि तरबियत की जाए तो तरबियत जहन का काम है, यानी तरबियत बोलने का काम है या करने का काम है? आया तरबियत बोलने से होनी है या तरबियत करने से होनी है? तो हम सबको एक बात पता है कि अल्लाह ने जब भी अपने नबी का इंतखाब किया तो वो नबी अपनी उस उम्मत के बेहतरीन फ़र्द को बनाया, और वो बेहतरीन फ़र्द सिर्फ इल्म में नहीं होता था बल्कि इल्म और अमल दोनों के अंदर बेहतरीन फ़र्द होता था। और ये खुदा का निज़ाम बता रहा है कि अगर हम अमल के अंदर अपनी तरबियत को रिफ्लेक्ट नहीं कर सके तो लेक्चर्स देने से तरबियत नहीं हो पाएगी। और हम बच्चे का निज़ाम जानते हैं, बच्चे को शायद हमारे अल्फाज समझ में भी नहीं आएंगे लेकिन बच्चे को हमारा किया हुआ फौरन समझ में आ जाता है। तो तरबियत हमें समझ में आता है कि ये किसी लेक्चर का काम नहीं है बल्कि तरबियत अमल का काम है। तो एक बहुत सादा सा जुमला कहा जाता है वो ये कि भाई जो कुछ आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं पहले सालों खुद अमल करके देख लें। तो इतने साल जब आप अमल करेंगे तो फिर आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चे को सिखाना है कि इसकी कीमत है या नहीं है, और बच्चा इसको सीखेगा या नहीं सीखेगा। तो तरबियत अमल का नाम है। और क्या ये एक पार्ट टाइम जॉब है? ये भी हमें मालूम है, नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई ये सोचे कि हम बच्चे की जिंदगी में इतने अरसे के लिए फोकस्ड एफर्ट करेंगे तरबियत के ऊपर और उसके बाद फिर ये जैसे मर्जी करता रहे खुद करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी इस फोकस एफर्ट को काफ़ी लंबी मुद्दत तक चलाना पड़ेगा, यहाँ तक कि मिसाल के तौर पर यहाँ का जो सिस्टम है, हाई स्कूल के बाद बच्चे खुद ही अलहदा होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में इसके साथ रहना होगा कि आपने तरबियत करनी है। इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लीजिएगा आपकी अपनी ज़िंदगी कितनी फोकस

फोकस्ड है। आपकी और मेरी अपनी जिंदगी के अंदर हम फोकस नहीं है उन तरबियत के अहदाफ पर, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ तरबियत है हम उसके ऊपर कितने फोकस्ड हैं। अगर उस फोकस नहीं है तो बच्चा फौरन पिक करेगा कि जो मुझे सिखाया जा रहा है वो खुद वालदैन के अमल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कि हम लोग बहुत एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मौलाना हम तो बहुत दीनदार हैं लेकिन इंशाल्लाह हम बच्चों की तरबियत ऐसे करेंगे। अच्छा, ये जुमला पहले ही बता रहे कि काम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम तो खुद दीनदार दुनियादार हैं तो मामला ख़राब हो जाएगा। अगर आप खुद दुनियादार हैं तो फिर नहीं हो पाएगा इस तरीके से। शायद मैंने दीनदार कह दिया होगा तो अच्छा बन गया होगा वो जुमला। हाँ, अगर दुनियादार कह रहे हैं कि हम खुद दुनियादार हैं लेकिन हम बच्चों की तरबियत ऐसे करेंगे कि इमाम की खिदमत कर सके।

अम्मद आले अम्मद अजल फरज। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अम्मद आले अम्मद अजल फरज। ऐसे मौकों में वक्त लग रहा है जैसे उड़ रहा होता है और आपको पकड़ना होता है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही मामला हाथ से निकल जाए। पहली चीज हमने इस बात के ऊपर गौर किया कि हम बच्चों को नमाजी बनाते हैं, बहुत सारे नमाजी बेदीन हो जाते हैं। अच्छा, हम बच्चों को रिचुअल्स की तरफ लेके जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इनिशियल लाइफ में रिचुअल्स पे खूब अमल करते हैं, बाद में भाग जाते हैं। कितनी बच्चियां हमने देखी हैं जो बड़ी खूबसूरत पर्देदार बच्चियां थीं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद मामला बहुत बिगड़ गया। कितने बच्चों के अंदर हमने देखा है इनिशियली बड़े ज़बरदस्त जज्बाती काम करने वाले, थोड़े अरसे के बाद मामला ख़राब हो गया। तो मैंने इस बात के ऊपर गौर किया कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हम मेहनत करें तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि बच जाएगा। तो मुझे लगा कि वो चीज़ ना रिचुअल्स हैं ना इबादत हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे समझ में आया वो है क्रिटिकल माइंड, क्रिटिकल एनालिटिकल माइंड। ये अगर कहीं बच्चे के अंदर आ सके। अच्छा, इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि हम बच्चे को तरबियत कर रहे होते हैं, बच्चे के अंदर इबादत, अल्लाह से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें उसको दे रहे होते हैं। अचानक कोई एक इंसान आता है, वो इम्प्रेस करता है बच्चे को और एक चीज़ उसको पकड़ा देता है। अच्छा, वो जो जिसने इम्प्रेस किया वो कौन बंदा है? मुमकिन है फुटबॉल खेलने वाला। बच्चा कहीं जाता है कहीं खेलने के लिए, वहाँ पर एक बच्चा उसको मिलता है जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, बच्चा क्रेजी है। अब वो जो बच्चा, हमारा बच्चा क्रेजी है एक काम के पीछे, उसको एक चैंपियन मिल गया है, अब वो चैंपियन उसको देने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर बच्चे के अंदर वो क्रिटिकल माइंड नहीं हुआ, बच्चा पिक कर लेगा, फौरन पिक करेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर हीरो बनाने का बहुत जज्बा होता है। वो थोड़े थोड़े टाइम से हीरोज बनाता रहता है। तो पहले वालदैन को हीरो बनाता है, फिर टीचर्स को हीरो बनाता है, फिर प्लेयर्स को हीरो बनाता है, थोड़े थोड़े वक्त से अपने हीरोज बदलता रहता है। इस हीरो के बदलने में वो अपने मेंटेलिटी के ऊपर भी बेचारा जुल्म करना शुरू कर देता है। इससे कैसे बचा सकते हैं? एक ही रास्ता मुझे समझ में आता है, बच्चे के माइंड को थोड़ा एनालिटिकल और थोड़ा क्रिटिकल ये हमें बनाना पड़ेगा। बच्चे को ये बताओ मुझे किसी चीज को समझने के लिए करना क्या होता है। मैं एक मिसाल देता हूं आपकी खिदमत में। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को लेके चल रहे हैं और पहला मसला, जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं? अगर आपको बच्चे का क्रिटिकल एनालिटिकल माइंड बनाना, थोड़ी सी जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, वरना वो फॉलोअर बनना शुरू हो जाएगा और आपको थोड़ी देर में आपको फॉलो करेगा, थोड़ी देर में किसी और को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो आपको थोड़ी जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। अच्छा, जब जिम्मेदारी डालना चाहेंगे तो उसको कोई ऑप्शन देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? ऑप्शन देना पड़ेगा, वरना वो फॉलोअर बनेगा, कमांड को फॉलो करने वाला बनेगा। तो थोड़ी जिम्मेदारी भी डालें और थोड़ा उसको फ्रीडम भी दें कि वो चूज करे। जब वो चूज करे तो क्या उससे पूछना होगा कि तुमने क्यों ये किया, ताकि उसके जहन को ये पता चले कि क्यों का सवाल भी दिमाग में आना चाहिए था। अगर मैं और आप इसके ऊपर मेहनत कर सके कि हमारा आपका बच्चा अपने काम को करने के दौरान बार बार ये ढूंढ सके कि ये काम मैंने क्यों किया, तो फिर हमें लगता है कि शायद उसका दिमाग एक क्रिटिकल एनालिटिकल माइंड की तरफ जा सकेगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं? मैंने ऐसी एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज की कि जब हम जिम्मेदारी दे रहे हो तो क्या करें, एक और काम कर लें, गुफ्तगू करते रहें, पूछते रहें कि भाई तुमने ये क्यों किया। और ये बहुत छोटे लेवल से भी कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर जब आप किसी बच्चे से कहते हैं कि बेटा आप बताएं आपको कौन से शूज चाहिए, वो कहता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो आप उससे पूछेंगे अच्छा ठीक है, ये तो आपने ले लिया, ये आपने क्यों लिया? तो आप इस क्यों के सवाल को अगर उसके जहन के अंदर बार बार डालने की कोशिश करें और वो इसको ढूंढने की कोशिश करें, तो फिर शायद जब उसको कोई गलत बात देगा तो वो अपने आप से पूछेगा मैं क्यों लूं इसे, इसके ऊपर अमल क्यों करूं। अच्छा, अब एक और मुश्किल है हम तरबियत करने वालों के साथ। क्या हमें वो बच्चे ज़्यादा अच्छे लगेंगे जिनको हम कहें बेटा नमाज़ पढ़ लो और वो कहें हाँ ठीक है पढ़ लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छे लगेंगे, या वो बच्चे अच्छे लगे हैं जो हर कुछ मिनट के बाद पूछें क्यों पढ़ूं? कौन सा बच्चा हमें ज्यादा अच्छा लगेगा? ज़ाहिर है तरबियत करने वाले को पहला बच्चा बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैं कहूं वो कर ले, तो हमें इस बात पे बहुत अच्छा लगेगा कि वो ये करता रहे। और हम पसंद नहीं कर रहे होंगे कि वो बार बार हमसे हर चीज के ऊपर सवाल करे और खुरेदने की भी कोशिश करे, और बच्चे का दिमाग उसको खुरेदने की तरफ लेके जाएगा।

यानी वो इमोशनली बैलेंस नहीं होते अगर वो फिजिकल जेंटल टच उनको नहीं मिल रहा होता। अच्छा, हम लोगों की लाइफ का जो बिजी स्केड्यूल है उसमें वो जेंटल टच गायब हो गया, सही। अच्छा, इसका बच्चों की इमोशंस के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ रहा। तो मैंने एक स्टडी देखी थी, उसमें लिखा था कि तकरीबन 8 दफा वो जेंटल टच अगर उसको डेली मिले तो वो अपने अंदर इमोशनली ज्यादा सिक्योर फील कर रहा होता। अच्छा अच्छा, मैं अपने तौर पे सोचता हूँ कितने बाप ऐसे होंगे जो रोजाना 8 दफा अपने बच्चे को जेंटल टच दे पाते होंगे। बात कर लें 8 दफा, वो बड़ी बात है, बहुत मसला हो गया है। यहां पर इसकी वजह से जो एक अनसीन एक मुश्किल बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि यहां पर जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है वो ये कि मैंने कहीं पे बात की तो वहां पे कोई टीचर थी, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को हाथ लगाने में बहुत मुश्किल में है, बच्चों को हम ज्यादा हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहुत उल्टे रिएक्शंस हो सकते हैं, बच्चा कुछ और समझ सकता है, बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो हम लोगों को हाथ लगाने में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। कि हम, मुझे नहीं पता किस सिस्टम के अंदर ये नहीं होती है, किस सिस्टम में होती है, लेकिन बाहर उन्होंने इस तरह से रिफ्लेक्ट किया कि बहुत प्रॉब्लम है, ये इतना आसान काम नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इमोशनल गैप है ये बढ़ेगा क्योंकि ये वक्त गुजरने के साथ साथ और मुश्किल होती चली जाएगी। तो आप देखिए इस तरह से सोचना शुरू करें कि आपकी लाइफ में बच्चों की तरबियत का असर किस तरीके से पड़ने वाला है और हम उसे कैसे काउंटर कर सकेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया गुफ्तगू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग के अंदर क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चांसेस हैं कि हम इंशाल्लाह तरबियत में कुछ अच्छे काम अंजाम दे सकेंगे। और आखिरी बात, जाहिर है कि दुनिया का कोई काम अल्लाह से रबते के बगैर नहीं हो सकता, और ये जो तरबियत का अमल है ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये खुदा की नुसरत के बगैर नहीं हो पाएगा। तो अगर मेरे और आपकी ज़िंदगी में खुदा मुताल के साथ कोई ऐसा रबता नहीं है जिसमें हम खुदा से इल्तजा कर सकें तो मेरा अपने ख्याल है कि हम तरबियत के अमल को खुद नहीं निपटा पाएंगे, हम बहुत सख्त मुसीबत में फंस सकते हैं। तो हम दो स्ट्रेटजीज पर काम करें, एक तो अपने और खुदा के रबते को सही करें, दूसरा अपने अंदर तरबियत की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें, तब कहीं जाकर एक उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह बच्चों की तरबियत में अमल कर पाएंगे। मैंने जानबूझकर एक हिस्से को छोड़ दिया, वो ये था कि वेस्ट में रहते हुए बच्चों के साथ क्या होगा। अब मैं इसलिए छोड़ दिया कि ज़ाहिर है कि आप इसको डील कर रहे हैं और आपको सब रोज़ाना का काम है आपका इसको फेस करना, कि यहाँ जो कल्चर बच्चों को मिल रहा है उस कल्चर का बहुत सारी जगहों पर हमारे कल्चर से एक कोलिजन है, डायरेक्ट कोलिजन। और इसके अंदर हम बच्चे को कैसे कन्विंस कर पाए कि वो यहाँ भी रहे, इस टकराव को फेस भी करे और अपनी तरबियत में उसकी तरबियत में हम कामयाब हो सकें। और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो इसका जो हल होना चाहिए था वो हमारी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो बदकिस्मती से हमें ना यहाँ मिल रही है ना कहीं और मिल रही है और ये मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। इसके ऊपर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो और बात कर लेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा, थोड़ा सा तेज़ बोलने में मुश्किल ये होती है, जो मैंने कोशिश की ज़रा तेज़ से बोलूँ, तेज़ बोलने में मुश्किल ये होती है कि बास पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंस आप दिलवाना चाहते हैं लेकिन आप दे नहीं पाते, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर 2-4 मिनट और लगाएंगे तो शायद इंपॉर्टेंस क्लियर हो पाएगी। तो तेज़ बोलने में ये मुश्किल होती है कि बाज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ऐसी स्किप करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। तो हमने ये रिस्क इसलिए लिया कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था, जितना भी हम लोगों के पास टाइम है उसके अंदर ही हमने इसको रखना है। तो हमने पॉइंट्स कह दिए, अब ये कि आप क्वेश्चन जब करेंगे तो हम इसमें और कहीं मौका निकालेंगे और आपके क्वेश्चन के नतीजे में उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फिर। तो मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन ले लिए जाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसको सेट को हम देख लेते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स उससे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। इन्होंने एक सवाल किया कि एनालिटिकल क्रिटिकल एक्टिविटी की कोई एग्जाम्पल दें। एक एग्जाम्पल तो हमने देने की कोशिश की थी और दोबारा इसको कहने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मतलब है वो ये है कि जब आप बच्चे को कोई काम कहें तो उसको ये पता हो कि वो ये काम क्यों कर रहा है, और जब वो आपसे कहे कि आप मेरे लिए ये करें तो आप उसको उसके दिमाग को ये सोचने पे मजबूर करें कि उसने ये बात क्यों कही है। तो मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा था कि हत्ता अगर वो किसी शूज़ को भी सिलेक्शन करे तो आप उससे ज़रूर पूछें कि आपने इस शूज़ को क्यों सिलेक्ट किया है, आपकी वजह क्या है इसकी। तो उसको ये समझ में

है कि मुझे हर चीज के पीछे इसका क्यों भी ढूंढना होता है और कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब ढूंढना होता है। अब इसको आप लाइफ में मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं। मसलन आपका बच्चा कहता है कि भाई मुझे मसलन यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मसलन मुझे बास्केटबॉल खेलना है और मसलन मुझे बास्केटबॉल में ही कैरियर बनाना है, मुझे एक्चुअली एजुकेशन में कैरियर नहीं बनाना है, मुझे बास्केटबॉल में ही कैरियर बनाना है। अच्छा, अब आप उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने ये क्यों सोचा, और जब आप ये सोच रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब आप क्यों इसके जरिए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। फर्ज करें अगर आप बन गए तो जो आप बनेंगे क्या वो आपको खुश कर लेगा और क्या वो उन बातों को पूरा कर लेगा जिनको आप समझ रहे होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की तरफ लेकर जाएं और उसको इस बात की तरफ लेकर जाएं कि दूसरे पहलुओं के ऊपर भी गौर कर लें। तो मिसाल के तौर पर अगर वो बच्चा कह रहा है कि मैं इतने बजे ये काम करना चाहता हूँ, तो आप उससे पूछें कि आप कोई और काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? इस टाइम पे आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, और इसको इस तरह हंसी मजाक में रख लें कि बच्चा ये भी ना सोचे कि आप मिसाल के तौर पर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप उनके पीछे पड़ गए। तो इस तरह से आप अपने दिमाग के अंदर इसको ले जा सकते हैं। अब मैं बाज़ वक़्त ये सोच रहा हूँ कि क्या ये इतना क्लियर नहीं है कि मुझे इसको और तशरीह करना चाहिए। मिसाल जब हम कहते हैं क्रिटिकल माइंड और एनालिटिकल माइंड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब चीज़ों को एनालिसिस करें, हम जाते हैं उसको ब्रेक करना जानता हो। वो ये कह रहा है मुझे ये करना है, आप उससे पूछें क्यों करना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इससे लेना चाहते हो, क्या ये तुम्हें खुश कर लेगा या नहीं करेगा, इस तरह के सवाल जो बच्चे के जहन में आप फ़ौरन डाल सकते हैं, इससे उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखा है कि कैसे पता चले कि बच्चे के अंदर बच्चा डेविएटेड हो गया है, इस बात को कैसे अंदाजा लगाया जाए। हाँ, अब ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर मैं एक उससे शुरू करता हूँ, बहुत सादा सी बात से शुरू करता हूँ। मसलन मैं सेंटर जाता हूँ, बच्चा कहता है मुझे सेंटर नहीं जाना है, मुझे सेंटर नहीं जाना है। सही, अच्छा ये तकरीबन सबके साथ का गेम है कि वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ और आप हमेशा जाते हैं और वो कह रहे हैं मुझे नहीं जाना है। अच्छा, क्या ये इस बात की निशानी है कि बच्चा जो है वो बिगड़ चुका है? नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मसलन सेंटर के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको मुतासर नहीं कर पा रही हैं। मैं अभी कनाडा में एक जगह पे था तो वहाँ पर एक नया सेंटर बनाया गया। जो नया सेंटर था वो इत्तेफाक उसमें पहला प्रोग्राम यही था जो हमारा वाला हो रहा था। तो नया सेंटर बना तो उधर वहाँ पर इत्तेफाकन इसी टाइप का कोई डिस्कशन भी था बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो इस पर भी गुफ्तगू आई कि बच्चे सेंटर में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो किसी ने ये बताया, कहने लगे कि जैसे ही बच्चा उनका इस सेंटर में एंटर हुआ और उसको बताया उन्होंने कि ये हमारा नया सेंटर है, कहने लगा ये लग नहीं रहा, ये हमारा सेंटर लग नहीं रहा। तो उसने पूछा क्यों, कहने लगा इतना बड़ा है, इतना साफ है। हाँ, इसका मतलब है उसने एक बात सीखी है कि जो हमारे सेंटर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और गंदे होते हैं। ये मुश्किल है हम लोगों की। बस आप बच्चा कह रहे हैं मैं नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहते? अच्छा, मुमकिन है वो इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि उसके पास वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो वो स्कूल में देख रहा है, तो क्यों जाए? बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। तो जाके हमें एनालिसिस करना पड़ता है क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ। चलिए इससे गुजर जाते हैं। अच्छा, हमने उससे कहा बेटा नमाज़ पढ़ो, वो कह रहा मैं नहीं पढ़ रहा, अब क्या किया जाए? क्या ये इस बात की निशानी बन जाएगी कि बच्चा जो है वो गुमराह हो चुका है? तो मुमकिन है कि वो बच्चा ना पढ़ रहा हो, फिर अब क्या होगा? क्या वो गुमराह हो चुका है? मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी इससे पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? शायद हम उसको नहीं समझा पाएंगे ऐसा नमाज है क्या। मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि एक हुक्म के पीछे कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ के पीछे अकायद होती हैं, शायद हम खुद भी क्लियर नहीं थे और हम बच्चों को भी क्लियर नहीं कर सके। रोज़े के पीछे वैल्यूज़ क्या हैं, उसका अकायद से क्या ताल्लुक़ है? क्या हम जब बच्चे से कहते हैं कि भाई रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़ना है, ये सब चीज़ें क्लियर कर पाते हैं? तो मसलन खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह ताला बच्चे ने कहा कि मैं नहीं पढ़ रहा और मैं सोचूं कि ये गुमराह हो चुका है, तो मैं कहूँगा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं सोचे कि गुमराह हो चुका, मुमकिन मैंने क्लियर नहीं किया। अब एक और बात पूछता हूँ, जहाँ पे मुझे और आपको डरना चाहिए वो ये नहीं थी, डरना यहाँ पे था कि एक बच्चे को ये चांस मिला कि वो किसी की हेल्प करता और उसने नहीं की, इस पर आपको डरना था कि ये जो बच्चे के अंदर हमदर्दी का जज्बा नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये इतना जालिम क्यों बन रहा है, यहां पर डरना था। जब बच्चा किसी ऐसी चीज का क्लेम करे जो उसका राइट नहीं है, अब आपको डरना है।
ये बच्चे के अंदर जज्बा कहां से आ गया कि वो ऐसी चीजों को क्लेम कर रहा है जो असल उसकी है ही नहीं है, ये उसके अंदर एग्रेशन कहां से आ गया?

अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम इन बातों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जो सही जगह जहां पे डरने की है वो उन प्रिंसिपल्स पर है जिनके ऊपर ह्यूमैनिटी बनी हुई है, वो जगह सही डरने की है। कि जब खुदा न करे बच्चे के अंदर इस टाइप की चीजें हम नोट कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर हमदर्दी का जज्बा नहीं है, या बच्चे के अंदर, अच्छा हर बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत होता है, वो सेल्फिश होता है, लेकिन अगर हम इसको ज्यादा बढ़ता देख रहे हैं और हम इसको काउंटर नहीं करना चाह रहे, ये खतरनाक जगह है। तो आप बच्चे की इन वैल्यूज के ऊपर पहले तवज्जो देना शुरू करें, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर दूसरी चीजें जो हैं वो आना शुरू करेंगे। तो ये जो सवाल था कि बच्चे के अंदर डेविएशन कहाँ से साबित होगा, तो मैंने अर्ज किया कि ये इससे साबित नहीं होगा कि वो सेंटर नहीं जा रहा है, या मसलन हत्ता मैं कह रहा हूँ नमाज नहीं पढ़ रहा है, क्यों? शायद मैंने क्लियर नहीं किया उसे, शायद मैं नमाज को उस तरह पोर्ट्रेट नहीं कर पाया जिस तरह से मुझे पोर्ट्रेट करना था। जब वो अपनी वैल्यूज के अंदर भी गड़बड़ कर रहा हो, प्योर वैल्यूज के अंदर जिसका ताल्लुक एक्चुअली ह्यूमैनिटी से था, तब मुझे वाकई समझना चाहिए, सीरियसली देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसा यहाँ पे कम होता होगा, लेकिन खुदा ना करे अगर आप ये फील करें नहीं बच्चा झूठ बोल रहा है, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे डरना चाहिए, झूठ क्यों बोल रहा है। तो ये जो चीजें हैं यहां से एक्चुअल खौफ शुरू होना चाहिए कि बच्चे के अंदर अगर ये चीजें आ रही हैं, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको नमाज की तरफ भी ला सकते हैं, इबादत की तरफ भी ला सकते हैं, और उसके अंदर इसलाह कर सकते हैं। लिखा है फ्रॉम व्हेन और व्हाट टाइम तरबियत स्टार्ट्स। मेरा अपने ख्याल है कि शायद हम कोई भी जगह ऐसी पॉइंट आउट नहीं कर सकेंगे। अगर आप सही तरबियत की बात करें तो तरबियत तो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आप कह सकेंगे कहां से शुरू होगी। और अगर मिसाल के तौर पर इसमें एक सवाल में से एक आया था कि कोई एक बुक इंग्लिश में, तो एक बहुत अच्छे राइटर हैं आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी, उन्होंने बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ किताबें लिखी हैं। डॉक्टर अली कायमी नाम करके एक राइटर हैं, उन्होंने भी लिखी हैं। इनमें से कुछ किताबें इंग्लिश में भी तर्जमा हुई हैं और अब सूरत हाल नस्बता बेहतर है पहले के मुकाबले में, तो उसको ज़रूर आप देख सकते हैं। बस अगर उस पैटर्न को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो तरबियत एक्चुअली बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, यानी शादी के साथ ही शुरू हो चुकी होती है। जो हम और आप अगर वाकई तरबियत की बात कर रहे हैं तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, और आपका और मेरा बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मसलन एक स्टडी मुझे याद आती है, मैं उसको सिर्फ जल्दी जल्दी कोट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ मुल्कों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मेल न्यूट्रिशन का सामना किया, उनके बच्चों को सही गजा नहीं मिल पाई। अच्छा, कुछ कंट्रीज के अंदर ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ तो वो उस जमाने में हुआ जब वहाँ पे खवातीन, ज़ाहिर है उनमें से कुछ खवातीन प्रेग्नेंट भी थी, तो वो और उन मुल्कों में से कुछ मुल्क ऐसे थे जिनका मेडिकल रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग था। तो अब ज़ाहिर है कुछ मुल्कों में ऐसा कहत आता है जिसका मेडिकल रिकॉर्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो स्टडीज़ वहाँ पर अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन ये मुल्क जो थे मिसाल के तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इनमें से बाज़ मुल्कों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कहत आए और उस कहत में मेडिकल रिकॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग था उनके पास। तो उन्होंने इस बात को नोट किया कि जिन औरतों के ऊपर उस वक्त में प्रेगनेंसी थी जब कहत था, तो प्रेगनेंसी के टाइम में वो न्यूट्रिशन अच्छी नहीं कर पाई, तो उनके जो बच्चे डेवलप हुए हैं न सिर्फ उन बच्चों में उस मेल न्यूट्रिशन का असर था बल्कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी था। सही है? अब मैं एक अजीब बात सोच रहा हूं, चंद महीने उस औरत ने सही खाना नहीं खाया है, उसके असरात दो जनरेशन तक चले हैं, और ये जिस्म की बात हो रही है, क्या रूह के बारे में हमें क्या सोचना पड़ेगा फिर? ये कहां तक जाएंगे फिर? तो इस खातिर अगर कोई ये कहना तरबियत कहां से शुरू होती है, तो हकीकत ये है कि मैं अपने दिमाग में अभी जब सोचने लगता हूं तो मैं सोचता था कि नहीं, कहीं से भी नहीं कह सकते तरबियत यहां से शुरू, तरबियत कहीं से भी आप लोगों ने शुरू हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अब मिसाल के तौर पर हम जिस बच्चे को इस वक्त पाल रहे हैं उसके बच्चों की तरबियत एक्चुअली यहां से शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी एक्चुअली बनेगी जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मुतासर कर रही होगी। तो तरबियत बहुत लंबा काम है। और अब एक अजीब सी बात मैंने फील की है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, मुझे यूं लगा है कि अगर हमें, मैं इसमें वो नहीं कहना चाह रहा, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे यूं लगा है कि अगर हमें सही तरबियत देखनी है तो थर्ड जनरेशन में देख पाएंगे। वाकई तरबियत देखनी है मुझे यूं लगा तो हम थर्ड जनरेशन में देख पाएंगे। यानी क्या मतलब? यानी मसलन मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर थोड़ी बहुत तरबियत की और मैं

रिकमेंडेड, उन्होंने एक जिक्र को किया और उस जिक्र को करने की वजह से उनको कुछ चीजें कश्फ के तौर पे पता चलना शुरू हो गई। उस मुकाशफे के अंदर उनके सामने कोई हूर भी आई, उनके सामने कोई हूर भी आई। अच्छा, अब वो उसका एक वाकया है, मैंने कहीं पे बगैर कॉन्टेक्स्ट के वो वाकया सुना दिया। अच्छा, सिंपली ये हुआ कि वो लोग कई महीने तक उसका मजाक बना के घूमते रहे। बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने इन लोगों को आयतुल्ला तबातबाई के मजाक उड़ाने की तरफ धकेल दिया। अफसोस एक और इस बात पे हुआ कि इतना भी कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते, क्यों नहीं इतना हम लोग महरूम रह गए कि हमें इतनी चीजें भी समझ में नहीं आके दे रही हैं। तो मैं आपको कहूंगा भाई, अगर नहीं भी समझ में आया करें तो मजाक मत उड़ाया करें, क्योंकि मजाक उड़ाने वाला फिर मुसीबत में फंस सकता है। इमाम खुमैनी ने अपने बेटे अहमद खुमैनी को कई लेटर्स लिखे हैं, वो एक बुक में पब्लिश हुए, तो उसमें एक मौके के ऊपर लिखा कि देखो अहमद, अगर तुम्हारे सामने कोई मानवी मकामात को बयान करे और तुम्हें ना समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा ये करना, कहना मुझे समझ में नहीं आया, मजाक मत उड़ाना, वरना तुम उन मानवीय मकामात से महरूम रह जाओगे। इस तरह की उन्होंने नसीहत की। तो बाद अवकात हम लोग तो अब यहाँ पे बोलने से डरने लगे कि भाई इस टाइप की बातें जो है वो यहाँ पे किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले ली जाती हैं, फिर लोग उसका मजाक उड़ाएं तो बेचारे कहीं मुसीबत में ना फंस जाएं। बहरहाल इस तरह से हुआ कि आयतुल्ला बहजत अपने किसी उस्ताद के पास जाया करते थे जिनकी शोहरत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लोग उनको समझते थे ये दीवाने टाइप के हैं, वो इतने बड़े आरिफ टाइप के थे कि लोग उनको दीवाने टाइप के समझने लगे थे। तो उनके वालिद को कहीं पता चला आयतुल्ला बहजत के वालिद को कि भाई आपका बेटा जो नजफ गया था वो एक ऐसे आदमी के पास उठता बैठता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं, ये वो मखबूसुल हवास है, उसके हवास सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उनके वालिद को बहरहाल पिक्चर सही नहीं पता चली, वो बेचारे घबरा गए और उन्होंने लिखकर भेजा अपने बेटे को आयतुल्ला बहजत को कि भाई आप उस उस्ताद के पास मत जाया करें जिसके बारे में इतना ज़्यादा शोहरत अच्छी नहीं है। तो आयतुल्ला बहजत जो अपने वालिद के हुक्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो गए अपने उस्ताद के पास और कहा कि भाई ये क्या हो गया, मेरे वालिद ने इस तरह से लिखा। दोबारा उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, उनके वालिद को समझ में नहीं आई बात। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने अगर मेरे बेटे हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा और तुम नहीं जाना आइंदा से उनके पास। तो अपने उस्ताद के पास गए, कहा मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो अपने मर्ज तकलीद के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि भाई ऐसी एक सूरत हाल में जब उस्ताद बहुत बड़ी ज़रूरत है और बाप भी मना कर रहा है तो अब करना क्या है। तो अपने मर्ज तकलीद के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें अपने बाप की माननी पड़ेगी, तुम अपने बाप की मान लो और अल्लाह जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा अगर तुम अल्लाह की इताअत करोगे। तो वो उस्ताद के पास आया और कहा कि भाई इस तरह से हो गया, मर्ज तकलीद ने भी कहा है कि बाप की माननी चाहिए और मुझे जो है वो अब आप जो है वो मैं आप मेरे लिए क्या रिकमेंड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मत आओ कल से। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो मेरी ज़िंदगी का हदफ जो है वो पूरा नहीं होगा, चूँकि आप मुझे गाइड कर रहे थे ज़िंदगी के हदफ के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम खामोशी इख्तियार करो और खामोशी में गौर व फिक्र की तरफ जाओ तो खुदा तुम्हें गाइड कर देगा, खुदा तुम्हें गाइड कर देगा। अब पता नहीं आयतुल्ला बहजत को इस खामोशी में क्या मज़ा आया, उन्होंने इसको तकरीबन 2 साल तक इस तरह पकड़ लिया कि सिवाय वाजिबात के वो बोलते ही नहीं थे, सिवाय वाजिबात के वो बात ही नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर दर्स और बहस में बोलते थे, दर्स में डिस्कशन वगैरह के अंदर बोलते थे और बाकी किसी दोस्त से मसलन बाजार में इधर उधर वो कोई गुफ्तगू नहीं करते थे, खामोश रहते थे। अच्छा, साइलेंस की इतनी अहमियत है हमारे यहाँ, खामोशी की गौर व फिक्र की इतनी अहमियत है। अच्छा, जो इस सोसाइटी में हमें नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, ये वैल्यू के ही अगेंस्ट है। यहाँ पर यहाँ खामोशी पसंद नहीं है लोगों को और इस खातिर सोचने समझने का खाना जो है वो काफ़ी हद तक खाली हुआ हुआ है कि हमें लाइफ के बारे में सोचना है कुछ। तो अब आप इसका एक हल निकाल सकते हैं, तो हमें तो हल चाहिए होता है ना, कि कोई ना कोई हल होना चाहिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी सुबह की मिसाल के तौर पर वाजिब नमाज के बाद या रात को सोने से पहले आप 4-5 मिनट, 4-5 मिनट बहुत कह रहा हूँ, 4-5 मिनट निकालें और इसमें खुदावंद मुताल से गुफ्तगू करने की कोशिश करें। 4-5 मिनट में बहुत कह रहा हूँ, शुरू में 30 सेकेंड 1 मिनट भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है, और इसमें आप खुदा से गुफ्तगू करने की कोशिश करें। अब ये आपके सजदे में भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है ताकि आप इस काम को कर सकें। तो ये जो इन्होंने तबरुकात का मसला कहा, मैं इसके अंदर कोई वाज़े सोलूशन नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ये बात है। हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ कोशिश कर लें, जो बड़े हैं बच्चों पे हम ये मेहनत ना करें, पहले बड़ों पे कर लें और अपने हम फिक्र लोग ज़्यादा कर लें। वो ये कि
थोड़ी देर तक मजलिस

रिस्क के प्रेमिसेस में जब तक बैठे हैं, कम से कम कोशिश करें हंसी मजाक, जिसको हम लोग थोड़ा नेगेटिव वैल्यू देने के लिए हंसी ठट्टा कहते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर लें। लाइट मूड में मजाक कर लिया करें, लेकिन यह कि उसको वो गैदरिंग सारी उसी में तब्दील हो जाए, इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर लें, तो फिर देखिए इससे क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। लिखा है कंप्यूटर और मोबाइल से कैसे जान छुड़ाएं, क्या ये पॉसिबल है क्या? अच्छा, क्या जान छुड़ाई जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इससे तो जान नहीं छुड़ाई जा सकेगी। हाँ, ये हो सकता था कि हम ये पूछें कि इसको सही कैसे इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल कैसे करें। मिसाल के तौर पर लोगों ने इसके स्टैंडर्ड्स बनाए हुए, मिसाल के तौर पर मैंने एक बात नोट की कि भाई कभी कभी एक ईमेल आ जाती है रात को सोने से पहले, और वो पूरी रात बर्बाद करने के लिए बहुत कॉफ़ी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो जाती है। तो फिर क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि रात को सोने से चंद घंटे पहले अपने ईमेल को चेक करना बंद कर लें? क्या आप ये कहेंगे भाई ऐसा है, मुझे फ़र्ज़ करें कि मुझे 11 बजे सोना है या 11:30 बजे सोना है, तो 1-1.5 घंटे पहले से मैं ईमेल चेक करना बंद कर देता हूँ ताकि मैं पुरसकून नींद ले सकूँ किसी तरीके से। अच्छा, एक और रास्ता ये भी हो सकता है कि आपने ईमेल चेक करने के दौरान जैसे ही ये देखा कि नहीं, ये ईमेल थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है, आप उसको चेक ही ना करें। आप कहेंगे नहीं भाई, मुझे रात पुरसकून गुजारनी है। अच्छा, आप, मैंने तो इसको रात का, आप फैमिली के साथ भी कह सकते हैं कि भाई जैसे ही मैं फैमिली को टाइम देने की तरफ जाऊंगा, मैं अपने इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश करूंगा ताकि फैमिली को पॉजिटिव टाइम दे सकूं। मेरा अपने ख्याल है ये इंपॉर्टेंट कम है कि हम घर से बाहर कितनी देर हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब घर में हैं तो कैसे हैं। मेरा अपने ख्याल है कि घर वाले इससे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि हम बाहर कितना, शायद खुश भी होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब घर के अंदर होंगे तो हम कैसे इंसान होंगे। उसको अगर हम सही कर लें तो बच्चों के ऊपर भी और अपने ऊपर अच्छा असर पड़ सकता है, फिर हमारी प्रैक्टिस जो है वो बच्चों को भी कुछ सिखा सकती है। लेकिन ये सोचें कि जान छुड़ा लेने, ये मेरा अपने ख्याल है कि मुमकिन नहीं होगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, इन्होंने कुछ बहुत जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत डिटेल में कुछ सवाल किया है, और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे जहन में मांग रहा है कि पहले मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई इसका ये क्यों, उसके बाद जवाब हो सकते हैं। मसलन बहुत ज़्यादा अगर बिल्कुल पिन पॉइंट करके कोई क्वेश्चन किया जाए तो फिर इस तरह पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, ना वो क्वेश्चन में आ पाता है। मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा इतने साल का है, वो ये इतने साल के में ये काम करना चाहता है, सही है या गलत है? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, बहुत सारी डिटेल्स पूछनी पड़ेंगी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी टेंडेंसीज क्या हैं, ये है वो है, तब कहीं जाके कोई बात होगी। क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने उसको छुपाया, ठीक है, क्वेश्चन कुछ और था लेकिन उसमें था इतने डिटेल में, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। जब बच्चा नया नया बालिग हो तो नमाज और दूसरे वाजिबात के लिए कितनी सख्ती कर सकते हैं? मेरा अपने ख्याल है कि पहले तो सख्ती को निकाल दें कि आप नहीं कर सकते, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सख्ती से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि सख्ती से कर लेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि सख्ती से नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि हमारे पास रिवायतों के अंदर लिखा है कि वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक उसूल है, अगर काउंटर प्रोडक्टिव हो, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, आप सख्ती से नहीं कर पाएंगे। बजाय सख्ती से करने की, इसको मोहब्बत से करने की कोशिश करें। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी बच्चों के साथ अटैचमेंट कम है, उस अटैचमेंट की कमी की वजह से हम बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये काम अगर कर लो तो तुम्हारे और मेरे लिए कितना बेहतर है, और इसका रिप्लेसमेंट हम सख्ती में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सख्ती किसी सूरत में काम नहीं करेगी। भाई पाकिस्तान में नहीं कर रही, यहाँ कहाँ से कर लेगी, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। तो ये भूल जाएं कि सख्ती से होगा, ये सख्ती से नहीं होगा, सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही होगा और समझाने से होगा। और मुश्किल हम लोगों के साथ ये है कि जब हम बच्चे से कह रहे हैं कि भाई तुम नमाज पढ़ो, और वो कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा, अब हमने इसको समझाना है और समझाने का ब्रिज नहीं बना हुआ, समझाने का ब्रिज है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने बच्चे के साथ इतना प्रॉपरली कम्युनिकेट किया ही नहीं था। अब मैं नमाज की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए जिंदगी में पहली दफा उसके साथ इस अंदाज में गुफ्तगू करने की तरफ जाऊंगा, वो बहुत टाइम लगेगा, पहले ब्रिज बनाओ उसके अंदर, बहुत टाइम लगेगा, पहले कॉन्फिडेंस गेन करो उसके साथ। और ये प्रॉब्लम जाहिर है कि जो माइग्रेंट फैमिलीज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आती रहेगी, क्योंकि बच्चे फील नहीं कर पाते कि हमारे कल्चर के साथ कहीं साथ में हैं भी या नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे होते हैं वो ये फील कर रहे होते हैं कि इनका हमारे